अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।

एक बार माँ पार्वती लक्ष्मी जी के घर जाती हैं और वहां देखती हैं कि लक्ष्मी जी के पास बहुत सुंदर महल है। उनके मन में भी आता है कि मैं भी अपने भोलेनाथ से कहकर उनसे भी सुंदर महल बनवाऊंगी। पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी, मेरे लिए भी एक सुंदर सा महल बनवा दो, मैंने लक्ष्मी जी को नीचा दिखाना है। भोलेनाथ समझ जाते हैं, कहते हैं हम तो सन्यासी हैं, हमारा महलों से क्या काम। लेकिन पार्वती जिद करती हैं और उनके जिद पर एक सोने का सुंदर सा महल भोले बाबा बनाते हैं। पार्वती के गृह प्रवेश पर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है। उसी यज्ञ में रावण के पिता ऋषि विश्वा भी अपने पुत्र रावण को लेकर यज्ञ में आते हैं और यज्ञ पूर्ण करवाते हैं। पार्वती जी खुश होकर दक्षिणा मांगने को कहती हैं। इस पर रावण दक्षिणा में वही महल मांग लेते हैं और भोले बाबा उनको वही महल दे देते हैं। पार्वती बड़ी दुखी होती हैं। भोले बाबा के समझाने पर फिर दोनों कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। तो भक्तों, ऐसे ओघड़दानी हैं हमारे भोले बाबा।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से परिवार हरि प्रसाद धुन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तंत अख्तियार और श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। मार्सन से परिवार हरि प्रसाद धुन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन दखानस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

लुष्का लुष्का लुई लुष्का लुई लुष्का, ये तो है इब्तेदा आगे होगा क्या, ये तो है इब्तेदा आगे होगा।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayyar ho ja aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

खुशी के साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से परिवार हरि प्रसाद धुन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। मार्सन से परिवार हरि प्रसाद धुन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओकमेरवेक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्स द खानस्तान द हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टरडम से विधवा हिल्डा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुधवार की रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत विधवा हिल्डा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, छह लड़कन के मामा, तीन पतो तीन दामाद के ममुआ ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में और सुरीनाम इलाका सरामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टरडम से विधवा हिल्डा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत विधवा हिल्डा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, छह लड़कन के मामा, तीन पतो तीन दामाद के ममुआ ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका यह आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन दखांस्तांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार अमस्टरडम से परिवार महेश मंगोन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्तख यार औत श्रीमती हर्मिना महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टरडम से परिवार महेश मंगोन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्तख यार औत श्रीमती हर्मिन महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिनसदख आंस्टांद 2:30 किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ।

0: करना।
1: और मृत्यु समाचार सुनिए बथू फदौरव से। परिवार आंद्रे महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमान आंद्रे महेश का बड़ा भाई, श्रीमती कार्ला महेश का बड़कू, रीमी और जेमी के दादा, दर्शना और अहिल्या के ददवा ससुर, पांच लड़कन के आजा, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है और जो कि सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। बथू फदौरव से परिवार आंद्रे महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमान आंद्रे महेश का बड़ा भाई, श्रीमती कार्ला महेश का बड़कू, रेमी और जेमी के दादा, दर्शना और अहिल्या के ददवा ससुर और पांच लड़कन के आजा, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज दिन में 1 बजे से 2 बजे तक सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस दखांस्तांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रीमेटोरियम ओक मेरवैक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए। होफडॉर्फ से रिदी महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत रिदी महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बंगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम में और सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। होफडॉर्फ से रिदी महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत रिदी महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बंगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक स्ट्रक्स फन 1 uur tot 2 uur इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन दखांस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल।

0: मेरा था।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। निवखेन के रहने वाले समस्त परिवार घिसे शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में निखरन फैफ्तखियार और मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घेसाय के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना निवखेन का रहने वाला श्रीमान बीरजानंद घिसे की मृत्यु निवखेन के अंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। इन्हें लोग बिरजू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। निवखेन से परिवार घिसे शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल की आयु में निखरन फैफ्तखियार औत मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसे के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना निवखेन का रहने वाला श्रीमान बीरजानंद घिसे की मृत्यु निवखेन के सेंट अंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। इन्हें लोग बिरजू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले मंगलवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दिस दखाफन फन जीवन तोत अख्तूर उत्फर्सेंट्रम दालवेक उत्फर्सेंट्रम क्रेमाटोरियम दालवेक के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 उत्रेक्ट ओवरवेक्ट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 10:30 बजे वोंसडाग ओख्टेंड हाल्फ 11 किए जाएंगे। क्रेमाटोरियम दालवेक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 उत्रेक्ट ओवरवेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार घिसे और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार सुनिए। हार्लेम के रहने वाले परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में निखन जीवन तखियार औत श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सुरुजबली की मौसिया सास अश्विन और अरविंद के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खस्टहाउस जोइत में हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में निखन जीवन तखियार औत श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सुरुजबली की मौसिया सास अश्विन और अरविंद के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खस्टहाउस जोइत में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है। आने वाले सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले

यानवी से आप सुने सुपर हिट सॉन्ग तेरी अखिया का जो काजल मुझे तरपावे मॉय उजाला रेडियो पर आप सुने हैं इस गीत को एंड न्यू मरहूम नदीम खान जी

और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अभी आप गीत को सुने मरहूम नदीम खान साहब की आवाज में उजाला रेडियो पर। और अब किरण केदार। मैं दिल था अकेला अकेला,

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो। तो डीजे आप फरमाइश अब उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। आज इतवार का शाम का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज इतवार 26 तारीख जुलाई का प्रोग्राम सोंदक ससन त्विंत हिल्ली। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्त के लिए। और यहां से आप लोग सुनने को जा रहे प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अब से लेकर शाम में 5 बजे तक आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।

इतवार का शाम का प्रोग्राम, मैं हूं सुभाष सिंह गोविंद और जहां तक आप लोग हमें सुनते होंगे आप सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0808 पर 020-363-0808 पर।

प्यार से हमने उसे सजाया, और इस तरह से ये बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने और खास करके स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवास में ये बैठक गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल यार डमा डोलवा के चोखा वेल हमने जान ली कौन सी बात डमा डोलवा के चोखा मजोंची होई भी साल होई एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा अलमेरे शहर में

हाईमोंट एन शिवम केवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो चलिए प्रोग्राम में खजड़ी हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और हम सोच लो कि गनवा तो लोग भी मोई लगी बांधते को गाना हैगा, ये गनवा भी चाहिए जाने के और सुने के। सुरेन महाबली जी के

और इस तरह से शानदार सा खजड़ी जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सुरेश महाबली के आवाज में, ढोल पर अशोक मंसराम एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने बोलो। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग के लिए ला रहे हैं, एक और ऐसा ही बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस बार गाने वाले होंगे और देखा जाए द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

शाबाश शाबाश, बार बार बगिया में कोयल न बोले, इस तरह से द किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैट गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। अब की बार देखा जाए बेल्किशर में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने और इस गाने को मांग के है।

0: ये जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। और इस तरह से देखिए किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। वेल, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है और खास करके हरि प्रसाद शिव नंदन जी।
1: भर जानी मेरी दिल की कहानी, सुन दिल भर जानी।
0: और मेरे में तोनी सिर्फ भी प्रोग्राम को

शाबाश शाबाश, सुनो दिल भर जानी मेरे दिल की कहानी। और स्वर्गीय हरि प्रसाद शिवनंदन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, सुरनाम पारमारी बहु में स्टेफी पारख भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम स्वर्गीय पंडित हरि शिव बालक जी।

0: शाबाश शाबाश शाओ, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और खास करके स्वर्गीय पंडित हरि शिव बालक जी के आवाज में
1: मेरे दिल की कहानी।
0: एंड चलिए अब की बार तो एक बार फिर हरि प्रसाद सिंह नंदन जी के आवाज में, और इस गाना को मांग करने वाले हरलम में सीता के लिए गाना पेश है।

शाबाश शाबाश, सुनो सुनो मेरे दिल भर जानी मेरे दिल की कहानी यार। आई बॉय यू आर उजाला रेडियो, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा।

आई बॉय आओ आओ हमारे डार्लिंग आओ, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यार, कितना मोई कितना भी साल गाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, एगो बात है गा, और ढेर मिला चीज पूछे बोले कि जब कल्हिया तो खाई बने ले, चाहे जोची बने, डोक्सा बने ले या मुर्गा बने ले या लम्स बने ले, मैं बोले जब बात जा है तो बोले ओके पचौनी बोले तो पचौनी बोले ऐसे लेकर नत्युलक डोक्सा लम्स ये सब चीज बिहान खाइए तो और मोई और स्वादिष्ट नत्युलक लेकर लगे वहां एकदम से ट्रैक हो जाए। मैं सब बोलो कोई रेस्त, हम रेस्त कभी ना बोलिए, रेस्त जाने कौन चाहिए, रेस्त जो तो प्लेटिन बचे। आई बो चीजवा इफ चाहता बोले के वन ढेर मिला बोले कान में रास्ता जो है बोले ऊ पचौनी बोले पचौनी जो बा यार पचौनी जो तोर कढ़ैया में बचल है ऊ सब गान ऊ सब खाई और लेकर लगे नतुलक 20 साल। तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और ये खास करके ये सुंदर सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, गाने वाले होंगे देखा जाए स्वर्गीय रामदेव चैतू जी, और इस गाना को मांग करने वाली है एमी फैंस पोल्डर में बैठ करके प्रोग्राम को सुने हैं। तो ये गाना तुम्हारे नाम

वेल शाबाश शाबाश, तकदीर इन दिनों मेरी ऐसी बदल गई, क्या बात है यार। और इतना वेल इतना सब चीज हम जाने लो कि हर एक इतवार के घर के काम होवे हैं, कहीं पे सब घर के काम होवे हैं, कपड़ा तिरके होवे, कपड़ा धोवाई होवे हैं, जो भी आप करते होंगे यार प्यार से करिए। अगर आप पकाओ तो ये मोई से पकाइए, और जब नाचे छो ये तो खूब ठीक से नाच।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा दूसरा भाग और आखिरी भाग यार, करीबन 10 मिनट वाइज हो चुके हैं, 4:03 नो फॉर फिर खुद मेरा खलमा। मैं हूं सुभाष और जहां तक आप लोग हमको सुनते होंगे, सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 3 9 0 0 पर। चलिए अब की बार तंत आनी भी बैठ कर सुने और मांगे हैं नाचे नाचे तो नाच ले। मोती माला।

ஷபாஷ் ஷபாஷே போல் பூஜனியனுக்கு பூஜனியன் லாவா பூஜே अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और जिस तरह से हम आप लोग से बता चुके कि सब कोई घर के काम करे है, सब कोई घर के काम करे, कोई कुकुरु सफा करे, कोई अपन बदकामर सफा करे, कोई सॉफ्ट सॉफ्ट करे है, कोई पकावे है और कोई चुपचाप बैठल बा। तो चलिए लाइफ से फिर इन शहर में शानू जी भी प्रोग्राम को बड़े सुने हैं।

शाबाश शाबाश, मैं भौरा तू है पुल और ये जवानी लौट के आवे ना, मैं ये तेरा और तू मेरी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने देवेंद्र सिंह एंड सविता सिंह के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो। आई बॉय चलंदे अलमेरे में माला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। आओ हम सुनम सही तो उसमें हमारे मामी

0: आप लोग बैठ करके भोजन करते होंगे तो स्वादिष्ट भोजन कीजिए। और सुन एट बेन एट स्मैकलर
1: घुंघर बाजे
0: आई बॉय चलन दे।

गोरिया रे चुमकन बाजे रे ऐन डमाडोल चटनी कोंची बा डमाडोल चटनी कोंची बा कैसे ओके बनाओ जा डमाडोल चटनी वेल हम ना जाने लो साढ़े चार का वक्त है हाल फैल एंड वातरिंगन में श्रीमान राजन खुनखुन जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और खिड़कियां मसे ताके हैं

अब खिड़की खोली रही सारी रतिया, बोले रतिया तू कहां गवा दे ली। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड चलिए बरेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी

0: शाबाश शाबाश हो प्रीतम प्यारे, तू कहाँ बस तू है मोहे नगरिया बताए जा। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे
1: घूमत बात
0: औफदर्प शहर में आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं
1: गलिया के
0: और देखा जय
1: कोई
0: नरेश एंड चांद भी प्रोग्राम को सुने हैं बैठ करके।

शाबाश शाबाश। इस तरह से सत्यानंद रेखा जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। 20 मिनट बाकी रहा 5 बजे में, तुरंत खमनितन 4:05 एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और खासर के ललता प्रसाद पूरन की आवाज में गाना पेश है लक्ष्मी के लिए।

शाबाश शाबाश, जब से दिखली सूरतिया तो हार गोरिया। आओ मेरे शहर में देखा जाए, भाई मनोज मुंगार भी प्रोग्राम को बरकर सुने हैं।

शाबाश शाबाश मोर मन लागा, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। एंड चलिए आपकी बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए तो ना मानो मिक्स आप लोग सुनेंगे कृष्ण छेदी के आवाज में।

चादर बिछाओ बलमा। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और हमारे प्यारे सुनने वालों देखा जाए घड़ी तरफ करीबन करीबन 5 या 7 मिनट बाकी है 5 बजने में, और बैठे गाना का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम एंड सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे अब हम क्या देखे। लता जी एंड किशोर कुमार, फिल्म कभी कभी का गीत आप सुने।
1: मेरी जान
0: ठहरो मेरी जान, एक बार फिर किशोर कुमार एंड लता जी।

वादा करो कि जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, आ गले लग जा फिल्म का नाम, और गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, उजाला रेडियो का प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए। तो अगला गीत सुनिए।

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: The rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio ka paigham hai. Main hoon Shahid Gulzar. Namaskar. Assalam Walekum.

0: यूं जी मुझे पहचाना, ओहो नहीं पहचाना। शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज, सन 1961 का फिल्म बॉयफ्रेंड।
1: नहीं पहचाना क्यों जी मुझे पहचाना।
0: मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर है स्टूडियो में, एम्स्टरडम से ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं और मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स हम आपको आज का पैगाम में सुनाने वाले हैं। यू आर का पैगाम है, लीजिए अर्ज है, फिल्म का नाम नमस्ते इंग्लैंड।

Zinda humaj terilie, harpal rahumaj sirf terilie. Selection पेश की गई है अखंड शाह भंडारी और आतिफ असलम की आवाज फिल्म का नाम नमस्ते इंग्लैंड.

लुत्फा अब उठाते ही रहना यूआर से। मरहूम मोहम्मद अजीज साहब की आवाज साथ में द मेरिड क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी।

0: Ujala Radio. Radio. Tu jaane hai, toch? Toch?
1: मेरा दिल भी कितना पागल है, पागल साला दिल। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये कमबख्त प्यार तो तुम ही से करता है। आइए एक रिमिक्स वर्जन हम आपको सुना रहे हैं। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो, तू जाने है तो।

My Heart Goes Crazy For You Girl. मेरा दिल भी कितना पागल है, ओ साजन मेरे साजन। The Rocking You Are उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। इस बार आइए सुनते हैं फिल्म का नाम सुई धागा, मेड इन इंडिया। रुंकिनी गुप्ता और पापों की आवाज, पापा नहीं है पापों। क्या नाम

बेहतरीन सिलेक्शन आपके मध्य में प्रस्तुत किए गए है। तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा, फिल्म का नाम सुई धागा, मेड इन इंडिया। आपको मालूम है ना कि सुई धागा क्या होता है? सुई इज अ नाउट और धागा दट संहार। देखिए कोनों के भोंक ना दिए। आइए पायल देव और बादशाह की आवाज एक बार फिर से फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से हम आपको सुनाने वाले हैं। भरे बाजार फोन का नंबर आप नोट कर लेना, स्टूडियो का यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, यूआर के एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर आप नोट कर लेना हर कामकाज के वास्ते। 020-409-0807 पर आप डायल कर सकते हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के लिए जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या जो भी कार्य के लिए 020-409-0807 इट्स यू आर।

0: सुनते रहना, सुनते ही जाना प्रोग्राम को, हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are. You are. You are.
1: The most sensational and
2: the best. The best.
0: लीजिए प्रोग्राम में एक रोमानी हिंदी मैशअप। इसका मतलब है कि एक मिक्स सॉन्ग आप सुनेंगे। लीजिए आप मुलाहिजा फरमाइए उजाला रेडियो के पैगाम।

बदला। मैंने द क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज के प्यार का तू बदला प्यार से उतारो। जबकि पुराने गाने के बातें हुई है तो मुझे एक और गाना याद आ गया। इस बार एक वेरी ओल्ड सॉन्ग है और गाने वाली है सुरैया कि तेरे नैनों ने जादू किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, कुछ इस तरह सा सिलेक्शन है। आइए सुनते हैं सुरैया की आवाज़, तेरे नैनों ने जादू किया।

देख रहे कितना बड़का झूठ हम बोल ली कि नैनो ने जादू किया. जब नैनो जादू करेगा तब हिप्नोटिस शेर हो जाइए ना. तेरे नैनो ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया. परदेसिया सुरैया की आवाज़. आपने अभी यह सिलेक्शन सुने हैं. हमारे अजीज सुनने वालों को खुश करने के लिए आपके मनोरंजन के वास्ते मिले जुले संगीत हम पेश कर रहे. मैं हूं शहीद गुलजार. ये है स्टेशन यू आर उजाला रेडियो. ऑलंड से वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं. आप जहां से भी जिस तरह से हमें सुन रहे हैं दयाबे प्लस इंटरनेट या ऐप के जरिए या जहां से भी. मैं तो कान से सुनता हूं.

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति, दो लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना और दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में, सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टरडम से परिवार महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति, लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना और दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देश दखास्तान हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275/255 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार मार्सन के रहने वाले परिवार हरिप्रसाद धून महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है और सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था मार्सन से श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देशदाह आंस्टांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रिमेटोरियम अम्स्टर्डम उस दौर में।

0: मेरा था।
1: और मृत्यु समाचार अम्स्टर्डम से विधवा हिल्डा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत विधवा हिल्डा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, 6 लड़कन के मामा, 3 पतो, 3 दामाद के ममुआ ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टर्डम में सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टर्डम से विधवा हिल्डा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत विधवा हिल्डा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, 6 लड़कन के मामा, 3 पतो, 3 दामाद के ममवा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस दाख आंस्टांड हल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में।

और मृत्यु समाचार आप प्रोग्राम में सुनिए। अम्स्टरडम से समस्त परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड क्सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतों के ममवा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के पर नाना और पर आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सरमाका के पैदाइशी था। अम्स्टरडम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतों के ममवा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के परनाना और पर आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार आने वाले मंगलवार को किए जाएंगे दिन में 2:30 बजे। दिन खानस्तान द हाल्फ द्री वेस्कार्ड क्रीमाटोरियम ओकमेरवेख अम्स्टरडम उस दौर में।

और मृत्यु समाचार सुनिए ज्वानेनबर्ग से। योहान महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई, श्रीमती सीला महेश का बड़कू मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद, दियाना और मार्लिन के ददवा ससुर जीना और राफेल के नाना जेलानो, चिनाया और जेफानो के आजा, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। ज्वानेनबर्ग से परिवार योहान महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई, श्रीमती सीला महेश का बड़कू मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद, दियाना और मार्लिन के ददवा ससुर जीना और राफेल के नाना जेलानो, चिनाया और जेफानो के आजा, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देशदाख आंस्टांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रिमाटोरियम अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम से शांति महेश और अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टर्डम से शांति महेश और बेटा अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिन रखान स्टांद हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्कार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 272 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार्ड फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

एक और मृत्यु समाचार उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप सुनिए। हार्लेम से परिवार बुद्धो बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में नेखन सेफंतख यार औत श्रीमान रॉबी बुद्धो की बहन श्रीमती लीना बुद्धो रामसुख की ननद माइकल और सरिता की फुआ गीता और विकास मिश्रीलाल की फुआ सास देवांशी और दिया के नानी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस जैत में हो गई है। इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार रॉबी बुद्धो बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल के आयु में नेखन ज़ेफंतख यार औत श्रीमान रॉबी बुद्धो की बहन श्रीमती लीना बुद्धो रामसुख की ननद माइकल और सरिता की फुआ गीता और विकास मिश्रीलाल की फुआ सास देवांशी और दिया की नानी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हो गई है हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस ज़ोइट में। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक उत्फर सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के शाम 5 बजे वोंसदख मिदख फनाफेफिर किए जाएंगे वेस्खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बुद्धो और परिवार सुधवा और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: लगे चल।
1: बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है तो अभी ले लो। तो क्या

0: और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया का दूसरा भाग यहीं से आप सुनेंगे।
1: काफी है।
0: उजाला रेडियो पर बनाया जा रहा है हर एक इतवार की रात 9 और 11 के बीच।

गुलाम अली की आवाज उजाला रेडियो गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना है आपको, कुछ बताना है हमें आपको, तो ईमेल के जरिए हो सकता है। पता है info@ujala.nl info@ujala.nl।

की याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। आबिदा परवीन की आवाज में आप सुने। पंकज उदास इस

गमी दुनिया गमी दुनिया हमें भी गमों में शामिल कर ले। मेहदी हसन की आवाज़ में आप इस सुंदर गज़ल को सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है गीत और गज़ल की दुनिया। पंकज उधास जी एक बार फिर हिस्सा ले रहा है।

ईमान तो गया, पंकज उदास की आवाज, गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम का नाम है। आपकी खातिर, हाँ आपकी खातिर बनाया जा रहा है, और हम तो खुश नसीब है कि आप सुन रहे हैं

जब भी फूल खिले गुलशन में तेरी मिलन की याद आई, अशोक खोसला की आवाज में आप गीत को सुने, गजल को सुने। दोबारा गुलाम अली हिस्सा ले रहा है आज का प्रोग्राम में। और आज गीत और गजल की दुनिया में आखिरी गजल को आप सुनेंगे। इसी के साथ अभी हम रुखसत हो जाएंगे, फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ता में। तब तक हमारा इंतजार कर लेना, यहीं पर फिर मिलते हैं।

उजाला रेडियो है और यहीं से आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। और आप जो सुन रहे हैं हमारी खुश नसीबी है, तो चलिए इस प्रोग्राम में पहली गजल जो आप सुनेंगे तो पेश है गुलाम अली की आवाज में।

रो के मुझको रुलाना याद है, चुपके चुपके आंसू बहाना याद है। गुलाम अली की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, जिस प्रोग्राम में बातें हम कम करते हैं और आपको गीतों और गजलें सुनाते हैं। और अगला या तो अगली गजल जो आप सुनेंगे, तो अब पेश है पंकज उदास की आवाज में।

यूं राहें जिंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है। पंकज उदास की आवाज में सुंदर गजल को आप भी सुनें।

ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। गुलाम अली की आवाज में आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया उजाला रेडियो पर। मैं आपका दोस्त विजय है।

चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिलाया, पत्ता हिल गया, आहट, आहट को चाप कहते हैं। कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया। तो चला

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। मेहदी हसन के एक लाइव रिकॉर्डिंग अभी आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। कुंदन लाल साइगल जी हिस्सा ले रहा है।

अब हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। केएल यानी कि कुंदनलाल सहगल की आवाज में आप सुनिए। आप भी, हाँ आप भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हो, ये तो हमारी खुश नसीबी है। शुक्रिया।

कैसे तेरे बगैर गुजारी तमाम रात, आंखें तो थक गई थी मगर दिल नहीं थका। अशोक खोसला और सुमिता चक्रवर्ती से आप सुने गीत और गजल की दुनिया उजाला रेडियो पर।

0: झील में चांद नजर आए, पंकज उधास की आवाज में आप सुने। और जैसे रात के बाद दिन आता है और दुख के बाद सुख, वैसे अंधेरा के बाद उजाला। उजाला रेडियो,
1: तुम्हारी जुल्फ।
0: प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया का इस भाग, पहला भाग में एक आखिरी गजल, दूसरा भाग भी अभी जरूर सुन लेना।

0: अगर हो प्यार मजा हो दूना खाना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगान कहीं चूना।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता।